नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम विविध भारती सेवा आकाशवाणी जबलपुर से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रवण मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये जबलपुर केंद्र है। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग सू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू श्यान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और

0: शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विज्ञापन प्रसारण सेवा का जबलपुर केंद्र है। अब विविध भारती से आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

Chintan. भूल करने में पाप तो है, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 288, जिसमें आप सुनेंगे सुंदरकांड। ये कार्यक्रम होगा 6:35 पर। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में श्रृंखला ताल प्रवाह का भाग 6। कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम को शाम 6:45 पर पुनः सुना जा सकता है। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम होगा सुबह 7 बजे और 7:30 पर हम है राही प्यार के। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद सुनिए समाचार प्रभात सुबह 8 बजे। 8:15 पर त्रिवेणी में आज आप सुनेंगे आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को दिन में 2 बजे पुनः सुन सकते हैं। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिए नए गीत सुबह 8:30 पर और सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम। केंद्रित होगा फिल्मकार किशोर साहू पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। चित्रपट संगीत का समय होगा दिन में 11 बजे और 11:30 पर सुनिए मैटिनी शो। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का पुनर्वास विषय पर डॉक्टर संजय शर्मा से यूनुस खान की बातचीत। संपादन और प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। इस कार्यक्रम को रात्रि 11:30 पर पुनः सुना जा सकता है। दोपहर 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार और यादों की महफिल कार्यक्रम 12:05 पर। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम होगा दिन में 1 बजे। श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं। 2:15 पर दोपहर समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। मनचाहे गीत में हमारे साथ ही शामिल होंगे आपके साथ कुछ पत्रों को लेकर, तो सुनिए ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे। नाट्य तरंग, ये कार्यक्रम 3:30 पर दिन में आप सुन सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, लेखन रोमी शिरास का, निर्देशन मुद्रा राक्षस। दोपहर बाद 4 बजे सुनिए पिटारा में बॉम्बे टॉकीज, अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इस बीच आप 6 बजे सुनेंगे 5 मिनट के समाचार हिंदी में। शाम 6:30 पर सुनिए शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत और संध्या रंजन शाम 6:35 पर। विशेष जयमाला में आप सुनेंगे संगीतकार कल्याण जी को शाम 7 बजे। इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए जिज्ञासा शाम 7:45 पर और हवा महल में।

सुनिए सुनो कहानी काबुलीवाला का भाग एक। कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वाचन अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। कार्यक्रम का समय रात्रि 8 बजे। 8:15 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए और 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे चित्रपट संगीत। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 288 और आज आप सुनेंगे सुंदरकांड।

रावण की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ, किंतु कपड़ा लपेटते, घी तेल लगाते हनुमान की पूंछ लंबी होती गई। नगर के भंडार खाली हो गए। नगर में घुमा फिराकर जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लघु रूप धारण किया और अटारियों पर जा चढ़े। 49 पवन चले, पवन पुत्र जैसे आकाश छू रहे हों। सारा नगर धू धू कर जल उठा। नगरवासियों में त्राही त्राही मच गई। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जिन्होंने अग्नि की रचना की, हनुमान उन्हीं के दूत थे। स्वयं उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उलट पलट कर हनुमान ने सारा नगर जला दिया और तब जाकर समुद्र में कूद पड़े। तत्पश्चात वे सीता के सम्मुख उपस्थित होते हैं।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम फिर उपस्थित हुए हैं तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्रा जी के साथ। मिश्रा जी,
2: जी
1: ताल प्रवाह पर कई तालों की चर्चा हो रही है। क्लासिकल में बहुत सारे तालों का नाम सुनते हैं, मत्त ताल, रुद्र ताल,
2: जी
1: पंचम सवारी, आड़ा चौताल,
2: जी जी
1: तिलवाड़ा वगैरह वगैरह। पिछली कड़ी में हमने लोक गीत पर आधारित, लोकगीत में या फिल्मी गानों में जो ताल काफी बजता है, दादरा का जिक्र
2: जी किया
1: आपने
2: मैंने।
1: की थी,
2: जी
1: आपने बजाया भी
2: जी
1: है, और भी एक ताल फिल्म म्यूजिक में खूब प्रयोग होता है, उस ताल के बारे में आप बताएं।
2: मैं समझ गया दास बाबू, जहाँ आपका जिस तरफ इशारा है। पिछली कड़ी में हम थे दादरा,
1: जी
2: और दादरा के बड़े भाई थे, उनका नाम था कहरवा ताल।
1: अच्छा
2: जी हाँ, हम बड़े भाई इसलिए बोले कि जो हमारे श्रोता हैं उन कलाकारों के लिए नहीं, जो सीखने वाले कलाकार हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जिनको तबला गाना इंस्ट्रूमेंट या नाच सीखने का शौक है। मैं बड़ा भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब आपस में बड़े मित्र हैं, और जिसने तीन ताल को देख लिया
1: जी
2: वो सारे तालों को देख लेगा, क्योंकि तीन ताल हर ताल का राजा है, और कहरवा उसका छोटा भाई है, आठ मात्रे का है वो,
1: जी
2: धागे न तीन क धीन।
1: और ये दादरा का बड़ा भाई इसलिए कि दादरा चूंकि 6 मात्रे का है, इसलिए
2: दादरा को मैं जब,
1: बहुत खूब।
2: जी हाँ, जब मैं मंच पे बजाता हूँ, जब स्टेज पे बजाता हूँ अपने
1: जी
2: बेटे सत्यप्रकाश के साथ, तो हमारे कई प्रोग्राम में फारूक भाई रहे हैं, विनोद भी रहे हैं, तो मैं मनीषा जी इसको देता हूँ कि एक स्त्री कैसे चलती है, वो मैंने दादरा दिया है, क्योंकि दादरा का बड़ा सुंदर चलन था। आपको मैंने कल दिखाया था, कभी मंच पे आप मुझे सुनिएगा कि एक नारी कैसे चलती है, धात्र कधीना धातीना, और ठीक उसका बड़ा भाई धागे ना तीन कधीन, उसका जरा चलन जरा वीर पुरुष है, थोड़ा सा पुरुष।
1: जी
2: तो देखिए, दादरा का बड़ा भाई हो गया कहरवा, और तीन ताल का छोटा भाई हो गया कहरवा।
1: वाह,
2: तो आज हम इस कड़ी में कहरवा ताल को लेके चलते हैं, जो
1: क्या
2: आठ
1: बात है,
2: मात्रे का है,
1: क्या बात है,
2: और उसमें एक ताली एक खाली है,
1: वाह।
2: धा गे न ती खाली न धी न धा।
1: अच्छा, इस सिलसिले में मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा,
2: जी
1: कव्वाली में भी तो 8 मात्रे का ही
2: हाँ
1: कुछ
2: जी हाँ
1: ताल
2: जी
1: बजता है,
2: हाँ
1: कव्वाली
2: हाँ
1: ताल
2: जी
1: या उसका कुछ अलग नाम है?
2: नहीं वही है, लेकिन उसकी स्पीड अलग होती है।
1: अच्छा
2: हाँ, इसमें बहुत से फिल्मी गाने भी हैं।
1: अच्छा इसमें और भी एक मैं बात जानना चाहूंगा,
2: जी
1: ये कहरबा के जो ठेके होते
2: जी
1: हैं, किताब में कुछ लिखा होता है, लेकिन बजाते वक्त जैसे गजल में या कव्वाली में
2: जी
1: या भजन में
2: जी
1: या ठुमरी में ही अलग अलग ठेके बजते हैं, अलग
2: आप
1: अलग बोल होते हैं, उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं
2: बहुत
1: को
2: बहुत
1: थोड़ा कुछ
2: बढ़िया,
1: बताइए।
2: अरे बाब, बहुत सुंदर सवाल किया आप। देखिए, क्या है, हमारा अंदाज तो वही है। इसके जो मेन ठेके हैं, धा गे न ती न क धी न, अगर हम इसको किसी गजल के साथ या भजन के साथ बजाएंगे, और अगर वही ठेका बजाएंगे तो वो उससे मैच नहीं होगा,
1: जी
2: उससे मैच नहीं होगा, इसलिए हम उसको प्रकार में पलटे में बजा के धागे ना ती ना क धी ना धागे ना। अब इसको हम थोड़ा सा अगर अंदाज

0: चलिए इसको कहते छपकी, जो धिरकिट हम बजाते हैं, देखिए वहीं से आया वो। है भाई अंदाज?
1: अच्छा, नाल में भी क्या तबले की अंदाज बसता है या?
0: नहीं, नाल का अंदाज अलग हो गया, लेकिन ये आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं।
1: क्या बात है?
0: ये आ गया उड़ीसी के साथ जो बजना तक, पर है कहरवा का चलन है, वो है कहरवा का चलन,
1: लावणी?
0: लावनी लावनी। तो हम आज आपके सामने छोटा सा कहरवा ताल में श्रोता इसका आनंद लीजिए, देखिए क्या आनंद है। विनोद जी एक छोटा सा कुछ मुखड़ा बजाएंगे, मैं उसी में आता हूँ।
1: जरूर।

0: अब इसमें उड़ान, ये खास बनारस से आया है।
1: अच्छा,
0: ये बनारस में ही उड़ान बजाते हैं। उसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस अपने गुरु लोगों का जिन्होंने उस चीज को पैदा किया है
1: जी।
0: कंठे बाबा किशन महाराज जी, उड़ान क्या चीज है
1: जी,
0: उसको कहते हैं ठीक इसका

0: ये था तहरवा का अंदाज।
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या खूबसूरत चीजें आप हमारे श्रोताओं के लिए पेश कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है।
0: इसमें आपको बता दूं और श्रोताओं को बता दूं कि नौशाद साहब, एक बात बताना चाहूँगा। कई बार हम जब प्रोग्राम बजाते थे,
1: जी
0: मतलब बजाते हैं, जब नौशाद साहब जिंदा थे,
1: जी
0: उन्होंने मेरा एक कायदा सुना था धीरे धीरे के तक।
1: जी
0: तो वो बैठे थे और बोले कि बेटा कालीनाथ, तुमने बायां और धीरघिट का बड़ा अच्छा अंदाज किया है। तो उनका मुझे आशीर्वाद मिला।
1: बहुत
0: उन्होंने
1: बहुत
0: एक पिक्चर गंगा जमुना, ताल कहरवा में ही है और राग है मिस्र पहाड़ी, हमारे रफ़ी साहब ने गाए हैं। उसका गाना है, ज़रा सुर दे देना भैया। हो नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, वही गाना है।

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी छठी कड़ी। जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती मजेदार नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।

शेवन रिजवी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी धुन बनाई है AR कुरैशी ने। आलम आरा फिल्म से गीत है और गीत को स्वर दिया है आशा भोसले ने।

0: रुपहले पर्दे की एक अभिनेता।
1: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो।
0: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार।
1: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
0: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
1: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
0: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज़, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शिरीन फरहाद, इस फिल्म का गीत आपने अभी सुना तलत महमूद की आवाज़ में। तनवीर नकवी ने इसे लिखा था और एस मोइंदर का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ें, आवाज़ हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, तूफान और दिया। इस फिल्म से गीत रॉय की आवाजें, भरत व्यास का ने इसे लिखा है और वसंत देसाई का संगीत।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सारी दुनिया के दांत मजबूत करे। हाँ,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियाशी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक।
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या

0: करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री।
2: ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है?
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये गीत था फिल्म सिम सिम मर्जीना से। सुधा मल्होत्रा की आवाज थी, असद भोपाली ने इसे लिखा और AR कुरैशी का संगीत। इसी के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: विकटर मरे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम, हम है राही प्यार के, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं राजा रानी इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: तेरी राह।
1: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में सुनिए ये अगला गीत। फिल्म का नाम मदहोश। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।

0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में बेटी फिल्म का गीत, शकील बदायूनी की रचना, सोनिक ओमी का संगीत।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अप्रैल फूल। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन की धुन।

0: नमस्ते, मैं हूँ गीला कचरा डस्टबिन।
1: और मैं हूँ सूखा कचरा डस्टबिन।
0: लोग कहते हैं इतना बड़ा शहर हमेशा साफ कैसे रह सकता है।
1: हम कहते हैं सिर्फ दो डस्टबिन से। रुकिए, हम समझाते हैं।
0: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और गीला कचरा मेरे पास, यानी गीला कचरा डस्टबिन में।
1: प्लास्टिक, कागज, बोतल और पैकिंग मटेरियल मेरे पास, यानी सूखा कचरा डस्टबिन में।
0: फिर मेरे गीले कचरे से कंपोस्ट बन सकता है, जो आपके गार्डन में भी काम आ सकता है।
1: और मेरा सूखा कचरा रिसाइकल हो सकता है।
2: बस दो डस्टबिन और एक अच्छी आदत लेकर आ सकती है एक बहुत बड़ा परिवर्तन।
3: तो आप भी ये अच्छी आदत अपनाइए और गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखकर स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाने में अपनी भागीदारी निभाइए।
0: नमस्ते, मैं हूँ गीला कचरा डस्टबिन।
1: और मैं हूँ सूखा कचरा डस्टबिन।
0: लोग कहते हैं इतना बड़ा शहर हमेशा साफ कैसे रह सकता है।
1: हम कहते हैं सिर्फ दो डस्टबिन से। रुकिए, हम समझाते हैं।
0: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और गीला कचरा मेरे पास, यानी गीला कचरा डस्टबिन में।
1: प्लास्टिक, कागज, बोतल और पैकिंग मटेरियल मेरे पास, यानी सूखा कचरा डस्टबिन में।
0: फिर मेरे गीले कचरे से कंपोस्ट बन सकता है, जो आपके गार्डन में भी काम आ सकता है।
1: और मेरा सूखा कचरा रिसाइकल हो सकता है।
2: बस दो डस्टबिन और एक अच्छी आदत लेकर आ सकती है एक बहुत बड़ा परिवर्तन।
3: तो आप भी ये अच्छी आदत अपनाइए और गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखकर स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाने में अपनी भागीदारी निभाइए।
4: So, your place or mine?
5: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
4: कॉन्डम? लेकिन हम तो
5: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV, AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
4: अरे, तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
6: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारे
1: आमंत्रित कलाकार हैं
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
3: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
1: सुबह और शाम
2: 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं आप विविध भारती से सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आप आज के फनकार में सुनेंगे फिल्मकार किशोर साहू पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले और इसी कार्यक्रम को रात्रि 9:30 पुनः सुना जा सकता है। इसी के साथ आज का हम है राही कार्यक्रम ये हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और

0: रक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। पे तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य

0: दोनों की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
2: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अपितु हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हमको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान

0: नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रिय श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घमंड, हाँ घमंड यानी अहंकार, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो अत्यधिक आत्मसंतुष्टि या अपनी उपलब्धियों जैसे कि धन, पद, रूप या ज्ञान के गलत इस्तेमाल से पैदा होती है। ऐसे लोग हर समय अपनी महानता साबित करने के लिए अक्सर दूसरों की कमियां निकालते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई इन्हें इनकी गलती बता दे तो ये बहुत जल्दी आक्रामक रुख अपनाने लगते हैं। ऐसे अहंकारी लोगों के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते क्योंकि वे दूसरों को सम्मान नहीं देते। ये लोग हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और उन्हें खुद से कमतर आंकते हैं। इन्हें हर जगह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत होती है। देखा जाए तो अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है क्योंकि ये दंभ हमारी बुद्धि और विवेक दोनों को भ्रष्ट कर देता है और अंततः ये व्यक्ति के पतन और विनाश का कारण बनता है।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

घमंड यानी अहंकार, जिस पर आज हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु इसलिए है क्योंकि ये आपकी यानी हमारी सीखने की क्षमता को नष्ट कर देता है, विवेक को भ्रमित करता है और रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। जब किसी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो वह दूसरों के अनुभव और सलाह को कमतर आंकने लगता है और हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। साथ ही ऐसे लोग हमेशा दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने का कोई अवसर ऐसे लोग नहीं छोड़ते। गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा सब कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अज्ञानी ये मान बैठता है कि मैं ही करता हूँ। बाइबल भी बार बार घमंड के खिलाफ चेतावनी देती है क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति अक्सर घमंड से भरा, आत्मकेंद्रित और दूसरों को तुच्छ समझने वाला होता है। लेकिन ये सभी बातें, ये सभी आदतें यानी ये अहंकार मसीह के स्वभाव की

अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये हम सभी जानते हैं। इसके विपरीत सरलता और विनम्रता हमारे सबसे सुंदर और प्रभावशाली आभूषण हैं। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व निखर कर आता है। विनम्रता न केवल हमें दूसरों को सम्मान दिलाती है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के दरवाजे भी हमेशा खुले रखती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। दुर्योधन, जी हाँ दुर्योधन, हर सलाह को साजिश समझता था, क्योंकि अहंकार सवाल सुन नहीं पाता। जो खुद को हमेशा सही माने उसका अंत अक्सर अकेला होता है। इसलिए याद रखें, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। अहंकारी नहीं, विनम्र बनिए। दूसरों में कमियां खोजने के बजाय अपनी कमियों पर हमें नजर रखनी चाहिए। साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक छिपी हुई ताकत और महानता की पहली सीढ़ी है।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता।
1: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
0: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार।
1: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी। सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
0: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
1: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
0: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अब आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, सुबह का वक्त सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं बल्कि नई उम्मीदों और नई ऊर्जा का आगाज है। इसी खुशनुमा सुबह में कुछ दिलचस्प सवाल, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारा रोमांच लेकर हाजिर हैं आपकी अपनी दोस्त नेहा आगरकर देसाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। पहले आपको सुनवा रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत, आवाज़ विशाल ददलानी की। प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा है और जैकी वंजारी का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

साथियों, कभी-कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं होती। कभी प्यार से कही गई दो बातें भी किसी का पूरा दिन बेहतर बना सकती हैं। और हाँ, अगर आप अपने साथी का पसंदीदा गाना जानते हैं, तो हो सकता है आप उसे वो सुनवा दें और वो उस छोटे से गाने को सुनकर ही खुश हो जाए। और यदि वो गाना आपकी आवाज़ में आप खुद गा दें, तब भी आप अपने साथी को खुश कर सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी बातें जो होती हैं, वो भी हमारे दिन को खुशनुमा बना देती हैं। आइए सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: तो बाद में उनका सेग्रीगेशन मुश्किल हो जाता है। न तो ठीक से रिसाइकल हो पाता है, ना ही बायोडिग्रेड हो पाता है।
1: लेकिन अगर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए तो गीला कचरा खाद बन सकता है और सूखा कचरा रिसाइकल होकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: एक छोटा सा कदम कचरे को समस्या से संसाधन बना सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं, आपके घर के दो डस्टबिन से होती है।
1: गीला और सूखा कचरा अलग रखिए, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाइए और एक खुशहाल फ्यूचर के लिए भी अपना योगदान दीजिए। आज सुबह घर साफ करते वक्त आपने जो कचरा डस्टबिन में डाला, कभी सोचा उसका सफर कहां तक जाता है?
0: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की बोतलें, कागज, रैपर्स सब एक साथ मिल जाएं, तो बाद में उनका सेग्रीगेशन मुश्किल हो जाता है। ना तो ठीक से रिसाइकल हो पाता है, ना ही बायोडिग्रेड हो पाता है।
1: लेकिन अगर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए तो गीला कचरा खाद बन सकता है और सूखा कचरा रिसाइकल होकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: एक छोटा सा कदम कचरे को समस्या से संसाधन बना सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं, आपके घर के दो डस्टबिन से होती है।
1: गीला और सूखा कचरा अलग रखिए, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाइए और एक खुशहाल फ्यूचर के लिए भी अपना योगदान दीजिए।
2: श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर, सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ ये गीत, आवाजें अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बाघी फिल्म का गीत सुनिए मीत ब्रोज, अर्जित सिंह, रोज किला और खुशबू ग्रेवाल की आवाजों में। इसे लिखा है कुमार ने, मीत ब्रोज का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं की एंड का। इस फिल्म का गीत आवाजें मिथुन और दीपाली की, सईद कादरी के बोल मिथुन का संगीत।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हमारी अधूरी कहानी इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है कुणाल वर्मा ने, आवाज और संगीत अमी मिश्रा का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबिल फिल्म का गीत, आवाजें जुबीन नौटियाल और पलक मुछाल की। नासिर फराज ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म का गीत आवाज अरमान मलिक की। मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा है, अमाल मलिक का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं शानदार फिल्म का गीत अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य की ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत और आवाज। फिल्म का नाम शानदार।

ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अपना बचाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता योर वर्शिप। आज तक जो कानून को दगा देता रहा अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी।
1: ये आवाज फिल्म काला बाजार में उस मशहूर अदाकार की है जिसे दुनिया जानती है किशोर साहू के नाम से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर।

गुजरे दौर के सिनेमा के चहेते दर्शकों के लिए किशोर साहू एक सुपरिचित नाम है। बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार किशोर साहू ने 1937 से 1980 के बीच 22 फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1915 में तब के मध्य भारत और आज के छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग शहर में जन्म हुआ था किशोर साहू का। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से उन्होंने बीए। किशोर साहू के पिता रायगढ़ रियासत के थे। कॉलेज के दिनों से ही किशोर साहू कहानियां लिखा करते थे। अपने कहानी लेखन से ही वो सिने जगत के संपर्क में आए। तब के बंबई में उन्हें सिने जगत में पांव जमाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी।

मुंबई में अशोक कुमार और देविका रानी के प्रयासों से किशोर साहू को बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन प्रभात में काम करने का मौका मिला। किशोर साहू ने कुछ अरसा मुंबई में और बिताया और फिर वापस नागपुर लौट गए। नागपुर में किशोर साहू के मित्र थे द्वारकादास डागा। उन्हीं के सहयोग से किशोर साहू ने बाद में मुंबई वापस लौटकर अपनी फिल्म निर्माण संस्था की नींव रखी। इस संस्था का नाम था द इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड। अपने इस बैनर तले उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई बहुरानी। अपने फिल्म बैनर तले किशोर साहू ने जो कुछ और मशहूर फिल्में निर्मित की उनके नाम हैं पूनम की रात, पुष्पांजलि, मयूर पंख और बेटी नैना साहू को लेकर बनाई गई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां।

किशोर साहू अभिनेता, निर्माता, निर्देशक बनने से पहले लेखक थे। कहानी लेखन पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी ये प्रतिभा कई फिल्मों में नजर आती है। एक लेखक के रूप में उनकी चर्चित फिल्में हैं मयूर पंख, दिल अपना और प्रीत पराई, हरे कांच की चूड़ियां, औरत और तीन बहुरानियां। इस फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों को रेखांकित करती है। दिल अपना और प्रीत पराई का लेखन करने के साथ साथ किशोर साहू ने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: अपना।
1: निर्देशक के रूप में किशोर साहू की अन्य मशहूर फिल्में हैं 1942 की कुंवारा बाप, राजा, शरारत, वीर कुणाल, सिंदूर, साजन, 1948 की नदिया के पार, सावन आया रे, काली घटा, मयूरपंख, हैमलेट, किस्मत का खेल, बड़े सरकार, गृहस्थी, घर बसा के देखो, हरे कांच की चूड़ियां, पुष्पांजलि, धुएं की लकीर और पूनम की रात।

0: निर्देशक महेश कौल और साहित्यकार अमृतलाल नागर किशोर साहू के अभिन्न मित्रों में से थे। नागर जी ने किशोर साहू के लिए 3 फिल्में लिखी थीं, राजा, वीर कुणाल और कुंवारा बाप। फिल्म वीर कुणाल की नायिका थीं अभिनेत्री तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ। सन 1942 में बनी फिल्म कुंवारा बाप और सन 1943 में बनी फिल्म राजा हास्य प्रधान फिल्में थीं। इनमें स्वयं अमृतलाल नागर जी ने भी अभिनय किया था। किशोर साहू एक समर्थ अभिनेता थे। यूं तो उनके अभिनय से सजी कई फिल्में हैं, लेकिन जिन फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली, उनमें से ही एक है फिल्म गाइड में किशोर साहू द्वारा निभाई गई रोजी बनी वहीदा रहमान के पति मार्को की भूमिका। ये गीत है फिल्म काली घटा का।
1: हम

22 अगस्त सन 1986 को इस दुनिया में अपने जीवन रूपी रंगमंच की आखिरी भूमिका निभाकर किशोर साहू इस दुनिया से विदा हो गए। हमारे पास अब उनके अभिनय से सजीव फिल्में हैं और उनके परिजनों इष्ट मित्रों के पास हैं उनकी स्मृतियां।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: ये विज्ञापन प्रसारण सेवा का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अभी जी सुनिए जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: आलेख है राकेश प्रजापति का और वाचन स्वर है दीपा सिंह के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। सावन के महीने में छिंदवाड़ा की सतपुड़ा की पहाड़ियां और जंगल हरियाली से खेल उठे हैं। बादलों से घिरी पहाड़ियां, झरने और रिमझिम बारिश पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। छिंदवाड़ा के साथ सिवनी, बालाघाट, बैतूल और नरसिंहपुर से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। तामिया, पातालकोट, छोटा महादेव, छिंदी, चिमटीपुर और दीलाखारी जैसे पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। वहीं सद्धारा और अरहोनी के गर्म पानी के कुंड में श्रद्धालु स्नान कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता के बीच 21 से 23 अगस्त तक तामिया में 3 दिवसीय सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण होम स्टे, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव में पर्यटक सावन के झूलों, आदिवासी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का आनंद ले रहे हैं। साथ ही आदिवासी वेशभूषा और बांस का मुकुट पहन कर तस्वीरें खिंचवाने का भी विशेष प्रबंध है। एक ओर जहां प्रकृति मेहरबान है, वहीं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रशासन सतर्क है। छिंदवाड़ा में संभावित जल संकट को देखते हुए नगर निगम ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की है। महापौर विक्रम आहाके की अध्यक्षता में हुई बैठक में कम बारिश की स्थिति में भी शहर में पानी की आपूर्ति बनाए रखने पर चर्चा हुई। कन्हर गांव जलाशय का जलस्तर बनाए रखने के लिए पेंच क्षेत्र से पानी लाने के विकल्प पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा माचागोरा बांध से शहर को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की योजना पर भी विचार किया गया।

0: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छिंदवाड़ा का पुआमा नगर वन आज जैव विविधता की एक नई कहानी लिख रहा है। हाल ही में हुए पक्षी सर्वेक्षण में यहाँ क्रेस्टेड हॉक ईगल और पफ थ्रोटेड बेबलर सहित 38 प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए गए। वहीं दूसरी ओर रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए छिंदवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच टीम में मिठाइयां खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए लगातार जांच कर रही है। पिछले एक महीने में दूध पनीर मावा और अन्य खाद्य उत्पादों के 200 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। 108 किलो संदिग्ध घी जब्त किया गया है। सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिले में अधिकारियों ने गांवों का दौरा कर सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जमीनी स्थिति देखी। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने चांद क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान और उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता रखने और सभी पात्र लोगों को समय पर राशन देने के भी निर्देश दिए। पिछले दिनों चौरई में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर 60वां भव्य तुलसीदास जयंती समारोह आयोजित किया गया। सांसद बंटी विवेक साहू ने इस अवसर पर कला मंच के निर्माण के लिए सांसद निधि से 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसी कड़ी में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिले में समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने अपने सिर पर कलश रखकर इस यात्रा का श्री गणेश किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 82वीं जयंती भी जिले में सद्भावना दिवस के रूप में पूरे सम्मान के साथ मनाई गयी, जहां वक्ताओं ने संचार क्रांति में उनके योगदान को शिद्दत से याद किया। पिछले दिनों बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जिला बैडमिंटन संघ के सचिव जावेद खान के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय से मुलाकात की। कलेक्टर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस भी हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले के 224 गांवों और शहरी क्षेत्रों के 36,000 से अधिक हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 969 करोड़ और माचा गोरा ग्रामीण समूह जल योजना के लिए 937 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। पालुन्ना जिले के ग्राम भीमखेड़ी में नवांकुर सखी हरियाली यात्रा के दौरान महिलाओं ने पौधों की बच्चों की तरह देखभाल करने का संकल्प लिया। इस अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया गया। वहीं शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में डॉ जीवी ब्रह्मने ने सौर और पवन ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: ये विज्ञापन प्रसारण सेवा का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की तरक्की के लिए सुधार सरकार की मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों से वर्चुअली संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किन बितवा लिंक परियोजना की समीक्षा की और प्रदेश में बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय, सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। कल नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में उन्होंने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी सोच रही है। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना के जरिए देश में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत को दुनिया में

0: विकास और उम्मीद की बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और 50 लाख से ज्यादा परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से जुड़े हैं।
1: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोड मैप बनाया। इस रोड मैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
0: आज शिवपुरी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन नवीन कृषि उपज मंडी पेपर समा में दोपहर 12 बजे से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसमें वर्चुअली शामिल होकर किसानों को संबोधित करेंगे। महोत्सव में कृषि और उससे जुड़े विभागों की योजनाओं पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकमगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं है और सरकार स्थानीय उद्योगों को हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमी होटल, होम स्टे और इंडस्ट्रियल पार्क जैसी योजनाओं का लाभ उठाएं। डॉ. यादव ने कुंडेश्वर धाम को महाकाल लोक के तर्ज पर विकसित करने की भी बात कही।
2: सबका आग्रह था कुंडेश्वर को जरा कुंडेश्वर धाम बनाया जाए, तो कुंडेश्वर धाम भी जब बाबा महाकाल का महालोक बना और बाकी सब हुआ तो कुंडेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। तो टीकमगढ़ में एक बड़ी सौगात कुंडेश्वर भी देने की मैंने घोषणा की है। बहुत जल्दी टूरिज्म कमेटी है, इसमें टूरिज्म की एजेंसी आकर के उसके विकसित और व्यवस्थित प्लानिंग पे काम करते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उससे काम करे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किनवेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कल खजुराहो में परियोजना के काम की समीक्षा की और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। परियोजना पूरी होने पर प्रदेश में करीब 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और 44 लाख से ज्यादा लोगों को पेयजल मिलेगा। इसके अलावा 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का प्रावधान है। योजना से प्रदेश के 10 जिलों के 1,382 गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने 32 आईएएस और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कल तबादले किए हैं। इसके साथ ही ग्वालियर और सतना नगर निगम के आयुक्त भी बदले गए हैं। 10 जिलों के जिला पंचायत सीईओ को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में 2016 से 2024 बैच तक के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, एसडीएम और सहायक कलेक्टर शामिल हैं। खंडवा के जिला पंचायत सीईओ डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा को सतना नगर निगम आयुक्त बनाया गया है, जबकि उनकी पत्नी सृष्टि देशमुख गौड़ा को रीवा जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने 2000 मेगावाट पीक पावर क्षमता की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से खरीद शुरू करने की सहमति जताई है। इसके लिए दोनों राज्यों की बिजली कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। समझौते का मकसद दोनों राज्यों में बिजली के अलग अलग मौसमी मांग का बेहतर इस्तेमाल करना है। प्रदेश में अक्टूबर से मार्च तक रबी सीजन में मांग बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश में गर्मियों और खरीफ सीजन में बिजली की मांग ज्यादा रहती है। ऐसे में कम मांग वाले समय की अतिरिक्त बिजली को दूसरे राज्य की जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। योजना का मकसद देश में मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाहगंज में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि बाकी आवेदनों के

जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना लोगों का अधिकार है, इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। प्रदेश के मुरैना जिले में लंबे समय से बंद कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए एमएसएमई विभाग ने इच्छुक कंपनियों से ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 5 बजे है और 16 सितंबर को प्रस्ताव खोले जाएंगे। प्रदेश को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया। 19 से 21 अगस्त तक चले इस कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, स्पेस टेक, एवीजीसी, एक्सआर और ड्रोन निर्माण क्षेत्र की कंपनियों से निवेश और साझेदारी पर चर्चा हुई। प्रदेश के दो सरकारी शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। भोपाल की डॉ. अर्चना शुक्ला और सीधी के शैलेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। दोनों को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा। डॉ. अर्चना शुक्ला भोपाल के सांदीपनी विद्यालय महात्मा गांधी में उच्च माध्यमिक शिक्षिका हैं। वहीं सीधी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कंजवार के शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह का भी चयन हुआ है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून टर्फ, चक्रवात और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले दो दिन से भारी बारिश हो रही है। कई जगह नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने आज सिवनी, बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3 दिन तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को नीदरलैंड्स के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड्स ने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उद्यम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में चमोसे की जनजाति और लोक अनुष्ठान, सांस्कृतिक स्मृति और अभिप्राय विषय पर 2 दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया गया। आगरमालवा जिला अस्पताल परिसर से लगातार हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सतना में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह ने अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर रुटला का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये विज्ञापन प्रसारण सेवा का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:15 हुए हैं और इसी समय के साथ ही हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति सिंह का प्यार भरा नमस्कार।

शनिवार की इस खूबसूरत सुबह में आज आपकी रेडियो दोस्त आपकी अपने विविध भारती पर लेकर आई है प्यार के कुछ ऐसे तराने जिन्हें सुनते ही लगता है कि जैसे पुरानी कोई खूबसूरत याद फिर से सामने आ गई हो। कहते हैं ना कि प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, कभी आंखें कह देती हैं, कभी मुस्कुराहट तो कभी कोई गीत। और 90s के हिंदी फिल्मी गीतों की तो बात ही कुछ और थी।

उस दौर में मोहब्बत सिर्फ फोन पर 2 मिनट की बातचीत नहीं थी, इंतजार था, चिट्ठियां थी, मुलाकात का इंतजार था और दिल में छुपाकर रखा हुआ एक छोटा सा राज था। तो आज की सुबह उन सभी के नाम जिनके दिल में कभी किसी के लिए कोई खूबसूरत सा एहसास जागा था। तो आइए दोस्तों, दिल को थोड़ा सा सुकून देते हैं और शुरू करते हैं तराने प्यार के।

जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म का ये गीत था और आवाज उदित नारायण और साधना सरगम की। साथियों, सच ही कहा है कि पहला प्यार सचमुच पहला ही होता है। उसके बाद प्यार कई बार हो सकता है, लेकिन पहली बार किसी को देखकर दिल का इस तरह धड़कना शायद दोबारा कभी नहीं होता। और प्यार की यही तो खूबसूरती है कि जब सामने वाला कुछ कहे भी नहीं और दिल को उसकी हर बात समझ आने लगे। अब अगला गीत भी उसी दौर की मोहब्बत को आवाज़ देता है जब किसी की मौजूदगी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा लगने लगती है।

आशिकी फिल्म का ये गीत था और आवाज अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। क्या खूब कहा है धीरे धीरे से, क्योंकि असली प्यार शायद इसी तरह जिंदगी में आता है, बिना शोर किए, बिना कोई दस्तक दिए, और फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। 90s के ये गीत यही सादगी थी, शब्द आसान थे, धुनें दिल के करीब थी और मोहब्बत में एक मासूमियत। अब जरा सोचिए, कोई आपके सामने हो और आपकी आंखें उससे बहुत कुछ कहना चाहे लेकिन जुबा खामोश हो, तो ऐसी ही एक खामोश बातचीत के लिए ये अगला गीत।

बाजीगर फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना पंकज उदास की आवाज़ में। साथियों, कुछ रिश्तों में बातचीत कम होती है लेकिन एहसास बहुत गहरे होते हैं। कभी किसी की आवाज़ सुनकर मुस्कुराना, कभी उसका नाम आते ही चेहरा खिल जाना और कभी बिना वजह उसका ख्याल आ जाना, यही तो प्यार है। और जब प्यार थोड़ा और गहरा हो जाए तो फिर दिल चाहता है कि बस उस इंसान का हाथ में हाथ रहे और दुनिया थोड़ी देर के लिए बस वहीं ठहर जाए।

0: खामोशी फिल्म का ये गाना भी आपने सुना अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़ में। श्रोताओं, अब वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का।
1: नमस्ते, मैं हूँ गीला कचरा डस्टबिन।
2: और मैं हूँ सूखा कचरा डस्टबिन।
1: लोग कहते हैं इतना बड़ा शहर हमेशा साफ कैसे रह सकता है?
2: हम कहते हैं सिर्फ दो डस्टबिन से। रुकिए, हम समझाते हैं।
1: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और गीला कचरा मेरे पास, यानी गीला कचरा डस्टबिन में।
2: प्लास्टिक, कागज, बोतल और पैकिंग मटेरियल मेरे पास, यानी सूखा कचरा डस्टबिन में।
1: फिर मेरे गीले कचरे से कंपोस्ट बन सकता है, जो आपके गार्डन में भी काम आ सकता है।
2: और मेरा सूखा कचरा रिसाइकल हो सकता है।
3: बस दो डस्टबिन और एक अच्छी आदत लेकर आ सकती है एक बहुत बड़ा परिवर्तन।
4: तो आप भी ये अच्छी आदत अपनाइए और गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखकर स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाने में अपनी भागीदारी निभाइए।
1: नमस्ते, मैं हूँ गीला कचरा डस्टबिन।
2: और मैं हूँ सूखा कचरा डस्टबिन।
1: लोग कहते हैं इतना बड़ा शहर हमेशा साफ कैसे रह सकता है?
2: हम कहते हैं सिर्फ दो डस्टबिन से। रुकिए, हम समझाते हैं।
1: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और गीला कचरा मेरे पास, यानी गीला कचरा डस्टबिन में।
2: प्लास्टिक, कागज, बोतल और पैकिंग मटेरियल मेरे पास, यानी सूखा कचरा डस्टबिन में।
1: फिर मेरे गीले कचरे से कंपोस्ट बन सकता है, जो आपके गार्डन में भी काम आ सकता है।
2: और मेरा सूखा कचरा रिसाइकल हो सकता है।
3: बस दो डस्टबिन और एक अच्छी आदत लेकर आ सकती है एक बहुत बड़ा परिवर्तन।
4: तो आप भी ये अच्छी आदत अपनाइए और गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखकर स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाने में अपनी भागीदारी निभाइए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
6: फसा। अनजान ऐप से बचें।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आज सुबह घर साफ करते वक्त आपने जो कचरा डस्टबिन में डाला, कभी सोचा उसका सफर कहाँ तक जाता है?
9: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की बोतलें, कागज, रैपर्स, सब एक साथ मिल जाए तो बाद में उनका सेग्रीगेशन मुश्किल हो जाता है। ना तो ठीक से रिसाइकल हो पाता है, ना ही बायोडिग्रेड हो पाता है।
8: लेकिन अगर गीला और सूखा कचरा

0: अलग अलग रखा जाए तो गीला कचरा खाद बन सकता है और सूखा कचरा रिसाइकल होकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: एक छोटा सा कदम कचरे को समस्या से संसाधन बना सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं, आपके घर के दो डस्टबिन से होती है।
0: गीला और सूखा कचरा अलग रखिए, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाइए और एक खुशहाल फ्यूचर के लिए भी अपना योगदान दीजिए। आज सुबह घर साफ करते वक्त आपने जो कचरा डस्टबिन में डाला, कभी सोचा उसका सफर कहां तक जाता है?
1: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की बोतलें, कागज, रैपर्स सब एक साथ मिल जाएं, तो बाद में उनका सेग्रीगेशन मुश्किल हो जाता है। ना तो ठीक से रिसाइकल हो पाता है, ना ही बायोडिग्रेड हो पाता है।
0: लेकिन अगर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए तो गीला कचरा खाद बन सकता है और सूखा कचरा रिसाइकल होकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: एक छोटा सा कदम कचरे को समस्या से संसाधन बना सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं, आपके घर के दो डस्टबिन से होती है।
0: गीला और सूखा कचरा अलग रखिए, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाइए और एक खुशहाल फ्यूचर के लिए भी अपना योगदान दीजिए।
2: तो लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं आज के कार्यक्रम तराने प्यार के साथ। प्यार में कुछ पल ऐसे भी होते हैं साथियों, जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बस एक मुलाकात, एक नज़र, एक मुस्कान और दिल कहता है बस यही पल यही रुक जाए। लेकिन प्यार की कहानी में अगला पड़ाव होता है किसी को देखकर दिल का चुप रह जाना। हाँ, वही वो इंसान है जिसका इंतज़ार था। और इसी एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

1942 अ लव स्टोरी इस फिल्म का ये गीत था और आवाज कुमार सानू की। साथियों, किसी को देखकर दिल में उसके लिए एक खूबसूरत तस्वीर बन जाए और फिर उसके आसपास की हर चीज भी अच्छी लगने लगे। 90s का ये प्यार भी कुछ ऐसा ही था। उस दौर के गीतों ने हमें सिखाया कि किसी की तारीफ सिर्फ खूबसूरत शब्दों से नहीं बल्कि पूरे एहसास से भी की जा सकती है। और अब बारी है उस गीत की जिसने ना जाने कितने दिलों को एक दूसरे से मिलाया।

साथियों, कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वो एक दौर की पहचान बन जाते हैं। और ये गीत भी ऐसा ही है, 90s का वो रोमांस याद कीजिए, सरसों के खेत, ट्रेन का सफर, चोरी छुपे मुलाकातें और दिल में छुपा हुआ प्यार। आज भी इस गीत की धुन बजते ही उस दौर की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन प्यार सिर्फ पहली मुलाकात का नाम नहीं है, प्यार वो भी है जब किसी एक इंसान की कमी पूरी दुनिया की भीड़ में महसूस होने लगे।

साजन फिल्म का ये गीत था और आवाज़ अलका याग्निक और कुमार सानू की। साथियों, दिल बड़ा कितना अजीब होता है ना हमारा, जिससे प्यार करता है उसी के सामने अपनी बात कहने से डरता है। कभी सोचता है आज कह देंगे, फिर सामने आते ही सारी बातें भूल जाते हैं। और शायद इसी डर में भी प्यार की एक मिठास छुपी होती है। अब थोड़ा सा अंदाज बदलते हैं। प्यार जब दिल में जगह बना लेता है तो कभी कभी एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है।

गुलाम फिल्म का ये गाना था और आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की। साथियों, आंखें सच में बहुत कुछ कहती हैं, कभी शिकायत, कभी प्यार, कभी इंतजार और कभी इजहार। और शायद इसीलिए मोहब्बत में आंखों की भाषा सबसे खूबसूरत भाषा मानी जाती है। तो साथियों, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज की तराने प्यार के से दीजिए मुझे इजाज़त। और हमने 90s के उन गीतों को याद किया साथियों, जिनमें प्यार था, इंतज़ार था, पहली मुलाकात थी और दिल की वो बातें भी थी जिन्हें कहने के लिए अक्सर शब्द कम पड़ जाते हैं। शायद इसीलिए पुराने गीत आज भी हमारे इतने करीब हैं, क्योंकि गीत पुराने हो सकते हैं साथियों, लेकिन उनमें छुपे एहसास कभी पुराने नहीं होते।

साथियों कहते हैं मोहब्बत अगर गीत है तो गज़ल उसका एहसास है। गीत में दिल गाता है और गज़ल में वही दिल थोड़ा ठहर कर अपनी बात कहता है। प्यार के तरानों के इस खूबसूरत सफ़र के बाद अब वक्त है उन नगमों का जिनमें मोहब्बत थोड़ी और गहरी है, जहां एक नज़र के पीछे पूरी कहानी छुपी है, जहां जुदाई भी खूबसूरत लगती है।

आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में ही गजल अभी आपने सुनी कल की आवाज फिल्म से। अब अगला नगमा। आज दिल ने फिर एक राज सुनाना है तुमसे, इस बात को बस इतना ही कहना है, इतना ही बताना है। तुम मेरी धड़कनों में आज भी वैसे ही बसे हो जैसे किसी ख्वाब को आंखों में सजाना है।

जगजीत सिंह की आवाज़ और फिल्म का नाम आज। और अब सुनिए अगली गज़ल तवाई फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज़ में। तेरे प्यार की तमन्ना दिल में यूं ही पलती रहे, तेरी याद की खुशबू हर सांस में चलती रहे, जिंदगी की राह में चाहे कितनी भी शाम ढले, तेरी मोहब्बत मेरी हर सुबह बनती रहे।

अब सुनिए जनता हवलदार फिल्म से ये गजल अनवर की आवाज में। तेरी आंखों की चाहत में ये दिल हार जाए, तेरी एक मुस्कान पे हर खुशी वार जाए। मोहब्बत ऐसी हो कि दुनिया भी भूल जाए, तू सामने हो तो हर मौसम बहार हो जाए।

एक बार फिर सुनिए अनवर की ही आवाज़ में ये गज़ल अर्पण फिल्म से। मोहब्बत जब दिल में उतरी तो इबादत बन गई, तेरी हर एक याद मेरी आदत बन गई। तुझे चाहा तो खुद से भी बेखबर होते गए, तेरी चाहत ही मेरी अब ज़रूरत बन गई।

और इसी तरह एक गज़ल से शुरू हुआ सिलसिला हमें एक पूरी यादों की दुनिया में ले आया। पहली नज़र से निकला ख्याल, ख्याल से बनी याद, याद से बोली आंखें, आंखों के सामने आई मुस्कान और मुस्कान हमें ले गई उन पुराने दिनों तक जिन्हें आज भी हमारा दिल ढूंढता है। यही तो खूबसूरती है साथियों हमारी फिल्मी गज़लों की। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे कार्यक्रम की ओर जहां कहानी थोड़ी सी अलग है। यहां कलाकार एक रहेगा लेकिन हर गीत में उसका साथी बदलता जाएगा, एक आवाज़ लेकिन अलग अलग साथी और हर बार एक नई गीतों की कहानी। तो पेश है बदलते साथी और इस कार्यक्रम में हमारी आज की मुख्य कलाकार है अलका याग्निक, जिनके चुनिंदा गीत आज हम सुनेंगे उनके ही साथी कलाकारों के साथ।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा आपने सुना बरसात फिल्म से, आवाज अलका याग्निक कुमार सानू की, शब्द रचना समीर के और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का। अब सुनिए अगला गीत, एक बार फिर अलका याग्निक और उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गीत है। फिल्म का नाम है परदेस, शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

और अब सुनिए कसूर फिल्म से ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। बोल है समीर के और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

अब सुनिए जानम समझा करो, इस फिल्म का ये गाना अलका याग्निक और उनके साथी कलाकार कुमार सानू की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

तो साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम बदलते साथी। तो अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत गीत, एक और खूबसूरत एहसास और ढेर सारी यादों के साथ। तब तक सुनते रहिए विविध भारती और मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

ये विज्ञापन प्रसारण सेवा का जबलपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए श्रोताओं आज के कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। यादों की महफिल 12:05 पर। 1 बजे से आप सुनेंगे सुरीला सफ़र। दोपहर 2 बजे से आप सभी सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रादेशिक समाचार होंगे 2:09 पर, 2:15 पर दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे 2:30 पर। 3 बजे से आप सभी सुनेंगे सदाबहार नगमे। 3:30 पर नाट्य तरंग। 4 बजे से आप सभी सुनेंगे पिटारा बॉम्बे टॉकीज़।

शाम 5 बजे से आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। 6:05 पर आप सभी सुनेंगे फिर से तराने नए पुराने। 6:30 पर सुनेगा झरोखा। संध्या रंजन आप सभी सुनेंगे 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता। 7 बजे से आप सभी सुनेंगे विशेष जयमाला और 7:20 पर जयमाला जारी रहेगी। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष। हवा महल आप सभी सुनेंगे रात 8 बजे से। चित्रलोक सुनेगा रात 8:15 पर। 8:45 पर आप सभी सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे से आप सभी सुनेंगे आपके लिए और 9:30 पर आप सभी सुनेंगे आज के फनकार। रात 10 बजे से आप सभी सुनेंगे छाया गीत। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये विज्ञापन प्रसारण सेवा का जबलपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और

0: कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया, इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए यादों की महफिल।

0: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।

0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

परवीन सुल्ताना की आवाज थी कुदरत फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था। संगीत आरडी बर्मन का, विविध भारती पर चल रही है यादों की महफिल।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर, सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ें।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं।

0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है ना, बोलो, बोलो। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और इस फेसबुक पेज पर जो इबारत होती है उसके जरिए हमारे श्रोताओं को एक चैलेंज मिलता है। वो चैलेंज ये होता है कि कुछ गाने छिपे होते हैं इस इबारत में, जिसके जरिए आपको पहचानना पड़ता है कि आज के कार्यक्रम का ताना बाना आखिर क्या है। तो चलिए आज की इबारत हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। दो लोगों की बातचीत है ये, चलो गानों में बात करते हैं। मतलब, अरे मैं एक लाइन बोलूंगा जो किसी गाने की होगी,

फिर तुम बोलना लाइन बीच की भी हो सकती है। ठीक है, देखो मुश्किल लाइनें होंगी, चैलेंज मंजूर, शुरू करो। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं। नारी दीवानी हूं पीड़ा की रानी, मेरे ख्वाबों की झरोखों को सजाने वाली। किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। नए फूल फिर डगर में खिलेंगे, बहते चले हम मस्ती के धारों में। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इसका कोई पेंच भी ढीला है। हम न बोलेंगे कभी, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझो, आया ना मजा? तुम्हें तो बड़े गाने याद हैं। अगली बार फिर खेलेंगे ये खेल। ये है आज की इबारत, और बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं, और आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं इस गाने के साथ। और आप भी बताइए कि क्या गानों के जरिए आप भी करते हैं संवाद। ये भी बताइए कि इस गाने को किस शायर ने लिखा है।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि यूनुसी, ये संवाद वाली इबारत तो जैसे अब आपकी पहचान हो गई है। हम भी कभी कभी करते हैं गीतों के माध्यम से बातें और बड़ा ही मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई आपसे किसी सारगर्भित गद्यांश की उम्मीद रहती है और गानों की आधी अधूरी पंक्तियां जोड़कर आप इबारत ना दिया करें। तो भाई हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो पिछले कुछ हफ्तों से जब भी सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आपका ये दोस्त आता है, दो लोगों की बातचीत को गानों में पिरोता है और उसके ज़रिए एक इबारत तैयार होती है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक तरीका नहीं है तो बाकायदा गद्यांश लिखा जा सकता है जिसमें कोई शब्द होंगे और उन शब्दों पर गाने होंगे। पर जिस तरह से आज बहुत ही मुश्किल पंक्तियों को मैंने पिरो दिया है गानों में, आप में से कितने ऐसे लोग

हैं जिन्हें गाने खोजने में बहुत मजा आया और बहुत देर लगी गाने खोजने में। कई ऐसे लोग हैं मैंने देखा कि जिनके गानों को लेकर जवाब बड़े गलत आए हैं। मतलब ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पंक्तियों को थोड़ा सा गलत पहचान लिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा बहुत अच्छे से पहचाना। कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना था, कुछ रोता है जिन्होंने से बोला है, गाना है गुलजार साहब का जो कि नहीं है। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो गाना है ये किसी के आने से चेहरे पर चमक जाने वाली खुशी का गाना है। इस वीकेंड आपके घर कौन आ रहा है, क्या आपका चेहरा खिल उठे? आपको अपने घर किसके आने का इंतजार है?

क्या बात है, अभी अभी एक कमेंट ही आया है कि वक्त के इस गाने से चेहरे पर खुशी छा जाती है क्योंकि इस गाने में बजा पियानो इनॉक डैनियल साहब का बजाया हुआ है। इत्तेफाक की बात यह है कि बीते दिनों जब मैं पुणे गया तो इनॉक डैनियल साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी। बहरहाल एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में साधना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो लिख रही है कि अभी तो राखी आ रही है और अपनी बेटी का इंतज़ार है, वो अपनी नन्ही परी के साथ आने वाली है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि राखी है इसलिए मैं अपनी बहनों और बेटी का इंतज़ार कर रहा हूं। एक श्रोता को जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का इंतज़ार है। तो इसके अलावा एक और श्रोता है जिनके ससुराल वाले आ रहे हैं और वो त्रिकोणीय फल बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो आज कहीं जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनके घर कुछ लोग आ रहे हैं और उन्हें उनके आने से खुशी है। एक श्रोता है जिन्हें कुछ पत्रिकाओं की ऑनलाइन उन्होंने उनके ऑर्डर दिए थे तो उनका इंतज़ार है, यानी आंखों में चमक तब आएगी जब वो मैगजीन्स आ जाएंगी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रही है कि मैं आलसी होना चाहती थी लेकिन आज कोशिश किया और पहली हल कर ली। आज की इबारत कठिन है, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। कठिन आज की इबारत बाकायदा।

है और बहुत ज्यादा कठिन बनाई गई है। चलिए कठिनाई से आगे बढ़ते हैं और दूसरी कठिनाई की तरफ बढ़ते हैं। एक कठिनाई से दूसरी कठिनाई की तरफ। आप में से जो लोग ईमानदारी से बताना चाहते हैं, बताएं कि आज कौन है जो उनसे रूठा हुआ है। पढ़ने जैसे संदेश होंगे तो हम यहां पढ़कर बताएंगे, क्या पता ये संदेश सुनकर रूठा हुआ कोई मान जाए। दूसरी चीज, रूठे हुए को मनाने का आपका फेवरेट तरीका क्या है?

भाई कितना मजा आया ये पढ़ के कि एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे साथ रूठने वाली तो हमारी नवासी है, एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम में मान जाती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि काश मैं इधर बात कर सकती लेकिन अपनी सहेली के साथ अस्पताल में हूँ, मतलब किसी मरीज को देखने के लिए गई हुई है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कान पकड़ो और कुछ अपनी शक्ल ऐसी बनाओ के सामने वाले को लगे कि मस्का मारा जा रहा है। भाई बड़े अनुभवी हैं आप, बड़ी स्टाइल से आपने बताया है, एकदम तस्वीर आंखों के आगे खींच गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि मेरी श्रीमती जब मुझसे रूठ जाती है तब मैं उन्हें अदरक इलायची वाली चाय बनाकर खुद अपने हाथों से पिलाता हूँ। देखिए भाई सीखिए कुछ। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने रूठने मनाने के कुछ नुस्खे लिखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा भी होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर आप में से किसी श्रोता को रूठने मनाने वाले जो नुस्खे हैं अभी भी पता हैं और उसमें से कुछ नुस्खे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं तो जरा लिख दीजिए, हम जरूर शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई मुझसे रूठे ना और अगर गलती से कोई रूठ लेता है तो मैं माफी मांग लेता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है, इन्होंने बड़ा शॉर्टकट मारा है, लिखते हैं कि अब तो बहुत ईजी है, रूठने वाले को मनाने के लिए व्हाट्सअप ऑन करो, फ्लावर्स केक और सॉरी सेंड कर दो। भाई अगर इतने आसानी से लोग मान जाएं तो फिर बात ही क्या है। व्हाट्सएप पर नकली फ्लावर्स, नकली केक, नकली

क्या इससे कोई मानता है? चलिए, अब ये है कि एक श्रोता जो है उन्हें शायरी सूझी। उन्होंने लिखा, रूठना तुम्हारा भी अजीब मौसम है, तुम चुप हो तो कमरे में रखी चीजें भी जैसे धीरे धीरे बोलने लगती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि रूठते तो हम भी हैं, पर एक बात हमें हमारी अच्छी लगती है कि हम मान भी जाते हैं, ज्यादा देर तक हम रूठे नहीं रह सकते। ये भी एक मजेदार चीज है। तो आज के इस कार्यक्रम का रास्ता जो है वो रूठने मनाने की तरफ मुड़ गया है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक उम्र के बाद कोई किसी को मनाता नहीं है, ये भी अनुभव की बात है। फिर एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारी रूठने की उम्र पार हो चुकी है, अब तो सिर्फ समझौते में गुजर रही है। और इसके अलावा कई श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत कठिन है, लेकिन इस इबारत में जो बातचीत का अंदाज है वो पसंद आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं भीगने की तरफ। इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप, ये जरूर बताइएगा कि इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम रेनकोट या छतरी लेकर नहीं निकले तब जरूर ऊपर वाला टॉर्च लगा के देख लेता है और आपके ऊपर बारिश करवा देता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि मौका देखकर बारिश ने आपके ऊपर लगाया हो चौका?

0: साथ में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: इस बारिश में सबसे ज्यादा भीगने का मजा आप में से किसने लिया है ये जरूर बताइए।
0: रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।

भाई, हमने चाहा था कि आप में से बहुत सारे लोग भीगने के अपने किस्से बताएं, तो बड़ा मजा आए। एक श्रोता है, लिख रहे हैं कि फिलिस्तीन में तो पिछले 7 दिनों में खूब बारिश हुई और काम ही ऐसा है कि बाइक में चाहे रेनकोट भी पहनना पड़ता है, तब भी सारा बदन पानी से तर हो जाता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगना भी बड़ा मज़ेदार अनुभव है। पहली बूंद चेहरे पर पड़ती है तो लगता है आसमान ने चुपके से छेड़ दिया हो। फिर बाल, कपड़े, जूते सब अपनी अपनी शिकायत लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन मन है कि बचपन की तरफ लौटना चाहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि मुझे भीगना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे भीगने वाले गीत पसंद हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है, कहते हैं कि जैसे ही घर से निकले तो बारिश ने भिगो दिया, जब तक गाड़ी तक पहुंचे तब तक भीग चुके थे। इसके अलावा एक और श्रोता है, अचानक बारिश में भीगने का ज्यादा अनुभव तो नहीं, पर बारिश के मौसम में धूप खिली हो और छत पर कपड़े सुखाने डालें तो बादल जैसे भागे दौड़े चले आते हैं और हम कितना भी भाग कर जाएं सूखे हुए कपड़ों को गीले होने से बचा नहीं पाते। ये मजेदार बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात में खेतों की मेड़ों पर भीगते भीगते मजा आता है। बहरहाल, खेतों पर छाता लेकर श्रीमती जी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हों तो बात ही क्या है। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि कहीं बाइक चलाता हूं तो भीग जाता हूं अक्सर। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि धर्मशाला ओवरब्रिज में ड्यूटी जाते समय अचानक बारिश होने लगी और मैं भीग गया। घर वापस गया, कपड़े बदले, रेनकोट पहना और उसके बाद वापस काम पर गया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, भात लावणी यानी चावल की रोपाई देखने नसरापुर गए थे, तब बारिश में बहुत ज़्यादा भीगे थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अगर मेरी वाइफ रूठ जाती है तो मैं सॉरी कहता हूँ और जादू की झप्पी देता हूँ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा वायरल फीवर फैला हुआ है आजकल, तो इसलिए भीगने से हम बचते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में तो इतनी बारिश ही नहीं हुई कि हम भीग जाएं। और इसके अलावा इतनी सारी बातें लोगों ने बारिश के बारे में की है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ सीजन की बारिश कम होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो हम अपने टेरेस पर चले जाते हैं और भीगते हैं। बारिश की इतनी सारी बातें, कोई तो ऐसा होगा जो इस वक्त कार्यक्रम सुनते हुए भी बारिश का मज़ा ले रहा होगा, भीग रहा होगा। ये सच है कि वायरल फीवर का डर रहता है, लेकिन ये भी होता है कि बारिश हुई और लोग निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। आपके शहर के आसपास ऐसी कौन सी जगह हैं जहां बारिश में मनाया जा सकता है पिकनिक, जहां लोगों की भीड़ आती है बारिश के मजे लेने के लिए?

भाई इतनी जल्दी गाना खत्म हो गया। जो अच्छे गाने होते हैं उनके खत्म होने पर यही लगता है अरे ये गाना खत्म हो गया। एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारा सबसे नजदीकी शहर अयोध्या है, जहां राम की पौड़ी पर 12 महीने नहाते भीगते पिकनिक का मजा लीजिए, पुण्य कमाइए। एक और श्रोता है जो अपने जलंधर शहर के आसपास के घूमने के इलाकों के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो नर्मदा जी काफ़ी ऊपर तक आ चुकी हैं और शासन ने मना किया, उसके बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि बनारस में बारिश के समय 3 जगहों पर सब लोग पिकनिक करते हैं, सबसे पहले सारनाथ, फिर नमो घाट और फिर बनारस का 80, फिर क्या मजा है, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आप भोपाल आ जाइए, कोलार डैम चलते हैं, जंगल में चलते हैं, पिकनिक मनाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बीते 3 महीनों से हम पुणे में हैं, लोनावाला, तमहिणी घाट, अनेकों झरने और इस बार तो इंद्रदेव पूना पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं। और जहां तक बारिश में भीगने की बात है तो हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है शकील आजमी, वो कहते हैं खुद को इतना मत बचाया कर, खुद को इतना मत बचाया कर, बारिशें आए तो भीग जाया कर, क्या समझे आप। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि बारिश में भीगना तो होता है पर कभी कभी आंसू भी भिगो देते हैं, जज्बाती बात इन्होंने लिखी है। एक श्रोता लंदन में हैं जो बारिश का इंतजार कर रही हैं और कहती हैं कि इतनी गर्मी कि बगीचे की घास तक सूख गई है। एक और श्रोता हैं जो इंदौर में हैं, लिखती हैं कि मांडू बहुत आसपास है और वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मैं और मेरे पतिदेव जब भोपाल में मिलते थे तो बड़े तालाब के किनारे हाथों में गर्मा गर्म भुट्टा और फिर भीगने का मज़ा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे शहर के आसपास कारहांडला का जंगल है और ताडोबा है, पिकनिक मनाने के लिए बड़ी सुंदर जगह है। तो इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि किस तरह से उन्हें भीगने में मज़ा आता है और कैसे उनके घर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बारिश के दिनों में मनाया जा सकता है पिकनिक। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो सागर शहर में पिकनिक मनाने की जगहों के बारे में लिख रही हैं। एक श्रोता हैं जो गोरखपुर में हैं और लिखते हैं कि रामगढ़ ताल गोरखपुर में बारिश में घूमने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिल्कुल अब तो वहाँ जो चलने के लिए जगह बन गई है वो भी बड़ी सुंदर है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं जयपुर में आमेर, जलमहल, नाहरगढ़, जयगढ़, क्या बात है। तो भैया सारे देश की जो बारिश की शानदार जगह हैं उनके बारे में हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पिकनिक मनाया जा सकता है। खंडवा के पास हनुमंतिया टापू है, बैक वाटर का बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट, वहाँ भी बहुत मज़ा आता है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि 5 और 6 जुलाई को बहुत बारिश हुई और हम लोग मारवे बीच चले गए, बिल्डिंग की पूरी टोली गई थी पर भीगने नहीं दिया गया क्योंकि रेड अलर्ट लगा था। बिल्कुल समंदर जब चढ़ा हुआ हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, बारिश में दुर्घटनाएँ भी बहुत होती हैं। चलिए आज सुबह से आपके होठों पर कौन सा गाना तय

Ya llegan a... इस गाने की गीतकार कौन है ये आपको है बताना। और हाँ ये भी बताइए कि आपने सबसे अभी अभी कौन सी फिल्म देखी, नई या पुरानी, एकदम अभी।

भाई बड़ी मजेदार बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अलग अलग फिल्में देखी हैं, और ये जो सवाल है ना कि अभी आपकी देखी हुई ताजा फिल्म कौन सी है। ताजा फिल्म का मतलब ये है कि व्हाट फिल्म हैव यू सीन वेरी रिसेंटली, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो कितनी मजेदार फिल्मों का इंद्रधनुष सज गया। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा रिलीज हुई फिल्मों में से भी कुछ देखी हैं। अब जैसे एक श्रोता है जिन्होंने अपना देश देखी है, एक और श्रोता है जिन्होंने पुरानी वाली खामोशी देखी है, यानी वो खामोशी जिसमें गाना है हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू या तुम पुकार लो। इसके अलावा एक और श्रोता

हैं जिन्होंने दोस्ती देखी है। वाह वाह वाह, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत वाली दोस्ती। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बटवारा टू देखी है और आवरापन टू या थ्री जो भी है वो देखी है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने टैक्सी नंबर 9211 उनकी देखी हुई आखिरी फिल्म है। एक श्रोता है जिन्होंने परख फिल्म देखी है और उनके होठों पर सजा हुआ है गाना मिला है किसी का झुमका। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। इसके अलावा आज का अर्जुन फिल्म कोई श्रोता है जो देख रही थी और लाइट चली गई। और इसके अलावा दीवाना मस्ताना कोई देख रहा है, कोई देख रहा है हम साथ साथ हैं, दो आंखें बारा हाथ, साहब बीवी और गुलाम, और इसके अलावा मैं वापस आऊंगा, और इसके अलावा देखिए मेरे महबूब, ओहो हो, नमकीन गुलजार साहब की फिल्में भी कितने सारे लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा भागम भाग, जंगल और कुदरत। देखिए सिर्फ नाम अगर पढ़ें तो कितने सारे लोग क्या क्या फिल्में देख रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक बार लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, सोचा था रास्ते में बारिश होगी, गाने बजेंगे, मौसम रोमांटिक होगा, बारिश हुई, गाने बजे पर रोमांस की जगह पेट ने आवाज़ लगाई, पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करो फिर आगे बढ़ना, आखिरकार मंजिल से पहले एक ढाबा मिल गया तो समझ में आया कि कुछ सफ़र पेट के रास्ते भी तय किए जाते हैं। मजाक की बात लेकिन दिलचस्प। और इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अलग अलग तरह की फिल्में देख रहे हैं, जैसे एक श्रोता है जिन्होंने स्पाइडरमैन देखी है। उसके अलावा देखिए कितनी फिल्में हैं भाई, आराधना कोई देख रहा है, कोई गाइड देख रहा है। गाइड से एक चीज़ याद आ गई, आज गाइड फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति का जन्मदिन है, मार्को की भूमिका निभाई थी, उनकी याद का दिन आज है। कौन है वो कलाकार ये बताइएगा। योगेश के बोल आ रहे हैं। अब जाहिर है कि सवाल ये तो नहीं होगा, इस गाने के संगीतकार बताइए कहाँ।

इस गाने के जरिए योगेश जी बहुत बहुत बहुत याद आया, आपके इस दोस्त को उनके साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला है, और एक बेमिसाल इंसान, सादा लेकिन कितने गहरे गीतकार, कभी उनके बारे में बातें की जाएंगी। एक श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि गाइड के मार्को यानी किशोर साहू जी, उनकी याद का दिन है। जी हाँ, किशोर साहू, उनकी याद का दिन आज 22 अगस्त 1980 को उनका निधन हुआ था। और किशोर साहू मध्य प्रदेश के राजनांदगांव के रहने वाले थे और वहाँ से मुंबई आए और एक्टिंग की दुनिया में तो नाम कमाया, लेकिन वो एक निर्देशक भी थे और फिल्म लेखक भी थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कुछ फिल्में लिखी और इसके अलावा कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। क्या आपको पता है कि किशोर साहू की निर्देशित मशहूर फिल्में कौन सी हैं? एक फिल्म मैं बताता हूं, बाकी आप बताइएगा। हरे कांच की चूड़ियां किशोर साहू के निर्देशन वाली फिल्म थी। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मायूसी में गाने सुबह पर आते हैं, बड़ी बड़ी सुनी सुनी सी है जिंदगी, किसका रास्ता देखें, जिंदगी देने वाले सुन। एक श्रोता हैं जो कहते हैं अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, और इसके अलावा कहानियां सुनाती है, पवन नाती जाती है। एक श्रोता को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो जैसे गानों का रिवीजन हो रहा है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इंदौर में एक पुराना सिनेमाघर है मिल्की वे, जिसकी छत पतरे की थी और बारिश आने पर अलग ही पार्श्व संगीत बजता था। अब मुझे तो जावेद साहब के बोल याद आ गए, बजता है जल तरंग टीम की छत पे यूं। शायद इसी तरह के किसी एहसास के लिए उन्होंने लिखा होगा, बजता है जल तरंग टीम की छत पे यूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि किशोर कुमार की मखमली आवाज़, योगेश के दार्शनिक बोल, राजेश रोशन का ये संगीत, ये गाना अपने आप में अनमोल है। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे श्रोता अभी भी किशोर साहू को याद कर रहे हैं, मार्को जिनकी याद का दिन आज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अनमोल गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक बहुत नाजुक से एहसास को बयां करता है। सवाल ये है कि इस गाने को किसने लिखा?

एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शायद ये गीत का मालूम रूही ने लिखा है, जो गलत जवाब है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई ये गाना जो है ये कैफ भोपाली का लिखा गाना है और ये सही जवाब है। कैफ भोपाली एक बहुत ही नामी शायर, अगर आप मुशायरों के शौकीन रहे हैं तो वो ये गज़ल जो है बहुत तरन्नुम में सुनाया करते थे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नज़र के लगते हैं सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, और आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक समाना लगता है। ये कैफ भोपाली बहुत ही मशहूर वयोवृद्ध शायर भोपाल के, और उन्होंने ये गाना लिखा था, बहुत ही मशहूर गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, एक गुजराती कमेंट है जिसे मैं ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल गया। वो जिस तरह से लिखा है, मैं अगर ये लिपि पढ़ने की कोशिश करूँ तो लिख रहे हैं कि मुझे तो उदास गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आए तुम याद मुझे जब जब बहार आई, इस तरह के गाने पसंद हैं। देखिए मैंने गुजराती लिपि भी पढ़ ली। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज की तेज प्रश्नावली जो है और दिलकश गाने हैं, शुक्रिया। और इसके अलावा चिलमन का अंदाज, आनंद बख्शी ने भी चिलमन पर एक गाना लिखा है, सही पहचाना है आपने, उस गाने की बाद में करेंगे। इसके अलावा मन्ना डे का भी एक चिलमन वाला गाना है, अगर आपको याद हो तो जिक्र कीजिएगा यहाँ पर। एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि धुएं की लकीर का एक गाना लोकप्रिय हुआ था, तेरी झील सी गहरी आंखों में कुछ देखा है। एक श्रोता है जिन्हें मुझे करेक्ट किया है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हम पुराने ज़माने के लोग हो गए, उस ज़माने में राजनांदगांव मध्य प्रदेश में हुआ करता था, आपने सुधार किया, शुक्रिया राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता हैं, ज़रा सामने तो आओ चलिए, उनके अकेलेपन का गाना है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्हें उदास गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखिए, काली घटा, गृहस्थी, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्में किशोर साहू ने निर्देशित की। दिल अपना और प्रीत पराई, मुझे क्यों लग रहा है कि दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित, यस, दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित फिल्म है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा शुक्रिया इन तमाम जवाबों के लिए। अगला गाना आ रहा है और ये बताइएगा कि फिल्म प्यासा आपने कितनी बार देखी है।

एक श्रोता लिखती हैं कि प्यासा फिल्म बार बार देखी है फिर भी मन में प्यास रह जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं। एक श्रोता ये हैं जो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प लगेगा जब आखिर में आप कहेंगे अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। आपको कैसे अंदाज़ा लगा कि आखिर में यही गाना बजेगा, क्योंकि यही गाना तो हमने रख छोड़ा है आखिर में बजाने के लिए। एक दौर था जब दूरदर्शन पर रविवार को फिल्म आया करती थी और रविवार को जो फिल्म आती थी उसका बहुत इंतज़ार रहता था। उस दौर में देखी गई जो सबसे यादगार फिल्म थी आपकी, वो कौन सी थी ये बताइएगा। दूरदर्शन के ज़माने में जो रविवार की सबसे यादगार फिल्म होती थी, एक झलक इस गाने की बजा रहे हैं क्योंकि इस गाने का एक अंश आज की इबारत में था और उसके बाद आपसे विदाई लेने वाला वो गाना जिसके बारे में अभी अभी हमने कमेंट पढ़ा।

ये गाना जैसे रोमांच पैदा कर देता है। शैलेंद्र के ये बोल, सली चौधरी के तर्स, बेमिसाल गाना है। इस गाने को काटते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे शामिल करने का मन था। और अब वो गाना जो आप सभी से ये कहने की इजाजत देता है कि अब हम चलते हैं।

0: फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

दोस्ती वो रिश्ता है जिसे हम अनोखा रिश्ता कह सकते हैं। हर रिश्ता हमें बाय बर्थ मिलता है, पैदाइश मिलता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि जो कि हमें जब मिलता है, जब हमारे मिजाज, हमारे जो अखलाक है, हमारे बोल चाल का तरीक़ा है, हमारी जो पर्सनालिटी है, उससे मिलता जुलता कोई इंसान होता है, तब हमारी दोस्ती होती है। तो खैर, दोस्ती के ऊपर तो कहा जाता है कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। खैर, ये तो थी बात दोस्ती की। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गाना, जब जब फूल खिले से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया है। सुनिए ये खूबसूरत गीत।

चलाया तुमको हम पे प्यार आया प्यार आया ओ हमको।

जमात का परवाना, मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको

जब दिल खुश होता है तो हर जगह खुशी खुशी नज़र आती है, इसीलिए गानों में जो खुशी का जो दृश्य होता है वो अपने आप दिख जाता है कि किस फिल्म पर, किस एक्टर पे पिक्चराइज किया गया था। खैर, ये तो बातें हो गई गाने की, और ये था हमारा फिल्म संगीत का आखिर

गाना, और हम आपको याद दिला दें कि आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 2:30 से, तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में सम्मिलित हुए। कल से शुरू हुए इस 2 दिवसीय फोरम में देश और विदेश के प्रमुख उद्योगपति, नीति निर्माता एवं वैश्विक विशेषज्ञ सहभागिता कर रहे हैं। फोरम में आज एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया विषय पर विशेष फायर साइड चैट आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास यात्रा, निवेश की संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया।
2: हमारे राज्य के अंदर 340 से ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जहां 22 हमारे पास जंक्शन है, 8 एयरपोर्ट हैं। सरलीकृत रूप से अगर 1,00,000 एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक हमारे पास है, बिजली सरप्लस है, मैन पावर भी हमारे पास पर्याप्त है, बल्कि हमारे यहां तो रोजगार आधारित अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो लेबर को भी 5,000 रुपया पर लेबर हम सरकार की ओर से अपना अनुदान जोड़ रहे हैं इंडस्ट्री वालों के लिए।
1: किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसमें वर्चुअली शामिल होकर किसानों को संबोधित करेंगे। महोत्सव में कृषि और उससे जुड़े विभागों की योजनाओं पर प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहा है। इसी क्रम में नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में जनसंवाद शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल और काउंटर लगाकर नागरिकों को शासकीय योजनाओं, सेवाओं और पात्रता की जानकारी दी तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया गया। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत करी में अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। जयसिंह नगर विधायक मनी सिंह, कमिश्नर सुरवी गुप्ता और कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने युवाओं और महिलाओं से स्वयं का रोजगार स्थापित करने और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर द्वारा निरीक्षण कर शासकीय व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानना और समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूह के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकास उन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता आधारित आजीविका के अवसरों में तेजी लाने और देश में 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने पर चर्चा हुई। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बीते 2 दिनों से कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार सागर, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, रीवा, उज्जैन, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक प्रदेश में इस समय 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 24 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी NICU में देर रात आग लगने से झुलसे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के 3 नवजातों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बुरहानपुर में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन एवं आत्मा योजना

के तहत अंतर्राज्यीय कृषकों, वैज्ञानिकों और मास्टर ट्रेनरों को प्राकृतिक खेती का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मुरैना में 24 से 27 अगस्त तक जिला स्तरीय राखी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला ज्ञानेश्वरी हाट मुरैना में लगाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम

0: 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज MT Cebu 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज MV 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
3: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

0: एचआरसी ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
1: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर है और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
4: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई हैं। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: वहीं एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

आँखों में सपनों की बारात झूमे।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको

0: अभिनेत्री फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा। सुनिए उनकी जिंदगी उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा MMS का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो

0: ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: तो भाई, मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू किया जाए और आप सभी श्रोताओं की चिट्ठियां आई हैं। नागपुर जिला पाटन सावंगी से गजानन लिखार, मनोज लिखार और संचना लिखार, महमूद आरिफ, आरिफ फातिमा, एम एच शरीफ, आरिफ हुसैन और साथियों की चिट्ठी रामना हल्ली बेंगलोर से आई है। और ये जो चिट्ठी है, मौजे गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार और श्रीकांत की है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और महेंद्र जैन की चिट्ठी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। और इसके अलावा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, न्यूटन चिकली परासिया, छिंदवाड़ा से अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश वाघ, अनुतेश वाघ और ऋतिक वाघ की फरमाइश पर ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार, राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम आंधी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।